ऐसा युवा दिवस मनाऊंगा आपको गाँव को समस्या समाधान का लगे नगर प्रमुख पूर्णावास कार्यक्रम में सहभागी बनाऊ यही कारण सत्ताईस गति समय बिहान 11 बजे स्थान बासगढ़ी सामुदायिक पुस्तकालय को।

चार आर्थिक वर्ष 2082 में इस वर्ष पनि नगरपालिका का विभिन्न वडामा प्रथम गरी कृषि विकास शाखामा प्रथम क्रियाशील कृषक संघहरू नवीकरण र नयाँ गठन

0: जिला खेल किशोरी मनोकुमार रजत कवि अर्थात रक्तदान बताए पढ़ा रक्तदान
1: नदी में तो टटका रहा था सब खरीदार

0: सागसब्जी फलफुल सहित कुछ लोग हमारे पत्रलाई तन्दुरुस्त बनाउँछ। खाना सँगसँगै दुई वर्षसम्म यसको काम जारी राख्छौ।
1: रेडियो पूर्वाभास एफएम द्वारा सन्देश।

0: सदाई ग्रंथ स्वस्थ संतान हो। जब अवस्था और स्तर पढ़ना स्वस्थ खाना का संकल्प नियमित रूप में आयरन कैल्शियम खाने छुटाए स्वस्थता सुरक्षित परिवार।
1: रेडियो द्वारा चौबीस

0: बजे स्वस्थ किशोरी जोशी का
1: रेडियो गुलबर्गा एफएम द्वारा चलचित्र जारी संग

0: साधना किया बोली साग सब्जी सब कुछ सही था फसल पूरा खाना है बच्चा खाना तंदुरुस्त बनाए पूरा खाना हम सब दुई बरस तक इस साल जारी करी।
1: रेडियो गुरुआवा एफएम द्वारा संगीत मजारी संदेश।

बुलेटिन में स्वागत है। मैं प्रेमी चौधरी कार्यक्रम आज मौसम सफलता आज कालसम जिला में पानी पर्ने संभावना निर्णय मौसम विभाग का निर्वाह मौसम सफल कृषि कृषि तथा दैनिक काम करना मल छिटना सहज हुने फलता इत्यादि मनसून को समय में मौसम परिवर्तन वृद्धि का अवलोक से मौसम संबंधी पाठक सूचना जसपर पाठक 24 घंटा में व्यवहारिक परिस्थिति का 48 विपर्क घटना करेगा। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण आज बिहान कल सजा से आज बिहान रात घटना में 27 जना खरीद विपद से 3 जना विपत्ता विपद प्राधिकरण का दैनिक विपद बुलेटिन अनुसार सर्वप्रथम सबको 25 घटना घटेगा। आगामी का साथ बैहक 1 पहले 17 अभिनल वर्षा को 6 तथा जनावर आक्रमण का 20 घटना घटेगा। विपद का कारण बयान जिला प्रभावित होगा। सबसे ढेर सर्वप्रथम से घटना में 25 जना खरीद विपद पहले का घटना में 1 जना विपत्ता विपद से 1 जना खरीद विपद जनावर आक्रमण में 1 जना खरीद विपद यद्यपि विपद का घटना में से करीब 24,12,000 रुपया बराबर का अनुमानित क्षतिग्रस्त प्राधिकरण चलेगा। 10 ठाव में सड़क

गई थी, सभी तीन पदस्थों को मासिक परीक्षा तथा बजट पर पढ़ी थी। वार्षिक कार्य जनरल समूह कक्षा रात सदस्य को फोटो राष्ट्रपति नगर पालिका नगर कार्यपालिका को कार्यालय राष्ट्रपति ने पढ़ दिया।

0: 40 वर्षा पटेपछि नियमित स्वास्थ्य जाँच गरौ।
1: चिलो पदार्थ, माछा मासु कम खाऊ। खानामा फाटा र फल फुल खाऊ।
0: मद्यपान र धुमापान सेवन नगरौ।
1: स्वस्थ रहौ, सुखमय जीवन बिताउ।
2: रेडियो गुरुबाबा एफएमद्वारा जनहितकारी सन्देश।

0: स्टूडियो गुरुबाबा एफएम द्वारा जन हित में जारी संदेश
1: सिटी पर रास्ता नहीं है, ऐसा भी उनको बहुत बचाती है।

ऐसा हो या सिद्धिराशी भारतीय स्थान सभी नगर पालिका का इतना बड़ा मंत्रण भाई कृषि विकास शाखा मतदान प्राप्ति का कृषि की सत्संघारोह नवीकरण नया पठन भाई जनता नौकरी का दर प्राप्त करना इच्छुक कृषि सत्संघारोह जनता कलाई पक्ष का आवश्यक कार्यक्रम सहित

जन अधिकरण को रखकर आईसीसी की अनुमति समूह अधिकरण ही देता है। आईसीसी साहब के मजबूती द्वारा समूह अधिकरण समय

अनुमतिदान अनुसूचित स्थापना में जिम्मी द्वारा पूर्ण रूप में अनुमति प्रदान के प्रति समूह को प्रत्येक सदस्य नागरिकता को प्रमाण पत्र को प्रतिनिधि करने को स्वीकारी समूह प्रधान को निर्णय सहित तीन पदक समूह को मासिक परीक्षा तथा प्रश्न कर प्रतिनिधि वार्षिक कार्योजना समूह कक्षा नगर पालिका को कार्यालय कर दिया।

0: जमीन पर बैठा है। संध्या सवा सौ बजे हमारा संदेश में हमारा स्वागत बार संध्या किन्तु संग्राम में हमको आया है। उत्पादित हमारा संदेश पढ़ दिया था साथी एफ एम राजापुर और एफ एम गुलरिया पार्टी का रेडियो प्रतिबद्ध एफ एम गोरखपुर रेडियो खाते मालू जानकी गांव पालिका बांके मसीह प्रसारण प्रसारण पीठ का हमारा संदेश पर खरीदारी मुख्य मुख्य समाचार का शीर्षक से बांसवाड़ी नगर पालिका में अपराध की कुल समय का 90.2% करोड़ प्रगति बांसवाड़ी सात प्रगतिरोधा महरी पूजा महिला ऊपर जबरदस्ती करणी भारत में बारह भर्तियां का 45% का पकड़ाव नेपाल का समान बीस नेपाल तीस का उड़ाद अच्छे सहित चार जहां विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा व मध्य परिषद का 5 मुख्य निर्णय सार्वजनिक
1: बांसवाड़ी नगर पालिका पहले आर्थिक वर्ष 2082-83 में 91.2% प्रगति हासिल करना पहले आर्थिक वर्ष 2082-83 को वार्षिक समीक्षा में वो प्रगति सार्वजनिक समष्टिगत रूप में बेरोजगार भत्ता का राजस्व संकलन में 79% प्रगति हुई जमीन लेखा अधिकृत प्रमुख

जयगढ़ शाखा का पर्व तिहार में समक्रम कार्यक्रम योजना अंतर्गत मुख्य मुख्य योजना बेटी योजना शाखा प्रमुख अंतर्गत

मुझे अगर हमारे क्षेत्र में एक सबसे बड़ा होता है तो मैं सुनता रहना।